ती कशाची चिन्नी बेमी भर तुम मंदी चिन्नी खिलाली जाऊनम खिलाली जाऊनम खिलाली मंकी ती हे रावनम खिलाली खिलाली जाऊनम खिलाली।